0: से या दिल्ली से तने चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे फिट कर देगी टट कर देगी तेरे दांव से बड़ा कै पेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी
1: Yarından sonra onu da kutsaman gerekecek.

0: तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी पकड़ में इसकी आग है यो इंची टेप से ना पैगी तेरी कितनी ऊंची नाक है तेरी सांसें अटक जाएगी वो जोर पटक जाएगी तने चारों खाने चित कर देख
1: हाँ दिखी

0: तने चारों खाने चिट कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, टट कर देगी, तेरे दांव से बड़ा कै पेच पलट कर देगी, चिट कर देगी, चिट कर देगी।
1: Yarından sonra onu da kutsaman gerekecek.

0: लकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है। यो इंची टेप से ना पैगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर दे।
1: हाँ देखिए।